0: है क्योंकि सिर्फ सरफेस को नहीं स्काई को भी देखा गया है. हमें बताएंगी मिस माथुर वैशाली, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डिसीजन टू बोल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया?
1: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नीदरलैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं एंड देखा गया है कि हालांकि इस पिच पे सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को ही मिली हैं एंड उन्होंने जो चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का. एंड अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वोमेंस टी ट्वेंटी ब्लास्ट 2026 में अभी हुआ है रिसेंटली एंड इसमें 26 स्पिनर्स पे बोल्ड विकेट्स मिली हैं एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है. तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज़्यादा बेटर था बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये और हमारी शेफाली वर्मा के लिए ये एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं. एंड उसके बाद जब हमारी जेमिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती है हमारी हरमनप्रीत कौर तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को ख़त्म करके आ सकते हैं. और इस पिच पे खासियत और है, यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है.
0: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट. कर्नल भूपराज जी, India has also made a change, but that's in the bowling department. Arundhati Reddy is giving way to Nandini Sharma to be in the side. The young Nandini Sharma getting World Cup experience would be absolutely magnificent to watch. Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
2: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
0: Right.
2: So it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa.
0: Which is the bigger one.
2: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's the way things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
3: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं. हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084, 2342-1085. और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं. नमस्कार.
4: नमस्कार, मैं आपका रेगुलर श्रोता लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ कारंजा घाटी से.
3: जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है.
4: अब पहले मैच में तो हमारा परफॉर्मेंस जरा बात सही है लेकिन हमारा जो पेस बॉलिंग का मसला है उसमें थोड़ा हम कहीं से भी कमजोर लग रहे बाकी टीमों से. और शेफाली वर्मा और जेमिमा रैडक्लिफ का जो फॉर्म है उसमें थोड़ी चिंताजनक बात है. तो इसके लिए क्या आविष्कार कार्यवाही इन दोनों पेस बॉलरों के लिए कुछ करेंगे, इसके ऊपर मेरा सवाल है.
3: जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था. उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है.
5: ठीक है, बट शी इज अ प्रूवन कस्टमर, काफी रन बना चुकी है तो एंड शी इज गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है. क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता. सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली. दैट्स व्हाई द टॉस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया गोइंग टू बैट बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस.
0: एब्सोल्युटली. एंड कमिंग बैक टू वैशाली हियर, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150 and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up.
1: Maybe, but I can say ki yahan pe sabse main hai dono teamein aaj pehla mukabla khel rahi hai T20 ka and is mukable ko hum second match ki जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नजर देख सकते हैं क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं. ओडीआई में खेला है उन्होंने बट ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है.
3: जेमिमा का भी बल्ला
1: जितना की अभी स्मृतिका चल रहा है क्योंकि पार्टनरशिप